0: जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
1: फिर तो बहुत जगह भी जाना पड़ेगा
0: जी।
1: बहुतों का निमंत्रण होता है किसी को, सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
0: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं कर, चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सेकंड में पहुंचा सकती है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दुनिया के हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूप को

Sıra.

Bastard.

Shakti Singh.

Bye.

जय माया, जय प्रकृति।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विशेष दस पत्ते

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्मा अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी से कम छह मास में अपने को जीवन मुक्त
2: साधन के
1: उसे करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बासी करना और कोई बासी नहीं, कृति कला की बासी, बहाने बासी, कमजोरी की बासी, ये सब समाप्त।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप दादा अंडरलाइन कर माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज़

0: शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पांव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना मिट नहीं जाए। कभी भी कोई
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और सने है पानी, सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई।

0: 実家の
1: समस्या ऐसी थी।

इस स्वरूप बने।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप शरीर में होता। ऐसे।

some kind of shit. Brahma Bab Saman Banana. Arthat Frishta Banana. Shiv Bab Saman Banana. Arthat Nirakar Sthiti Me. से प्यार है ना, जिसे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प

0: रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम
0: सत्यम शिवम सुंदरम
2: पांडवों का गायन किया है। पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजय पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी। इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है साथ रहेंगे, साथी रहेंगे, माया का दरवाजा बंद।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी भी परिचय तो मिला है ना, परिचय मिला है तो प्राप्ति तो करनी चाहिए ना परिचय से। तो यही बाप दादा की आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ। क्यों कि इस समय जितने दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जवाब पूछे बनेंगे। तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे, सिर्फ अभी नहीं दुआएं देनी है आपको, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते कम नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारटी नहीं, मैं चारटी। I'm not dead.

Швадра. Вращай ты.

Oíme. Yo quiero pelota. Oíme. Man sabe, baby.

sempre em teria que roubar. Oh.

Sam, malum pero alon ko vi par.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो बच्चा हसूर के हर श्रीमत हासर हसूर कर चलता है
3: सर।

0: Krásný.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा लगता है वो मांग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती थी। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो, सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते साथ देते हैं, लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखने हैं। ये तो हुआ दो घंटे का साथ,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: राज के अपने राज के इस समय बारे तो बार बार अपने स्वीटों और अपने स्वीट राज किस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग अगर निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: भी बहुत उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बहुत उतर जाए तो अच्छा है, यहाँ आया है
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद जाने वाली है उसके पीछे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा भी रोने डल याद है, एक सेकंड में स्टेज पे आए, पर हम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते। Suck.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: से वापी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है।

must

months.

आगे बढ़ेंगे।

0: hay menos que bufar. Taras no importa. ¿Qué apias y ha tomado aquí? ¿Pias no importa?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रही है, अगले वर्ष में हर बच्चा धीवर पुरुषार्थ जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है, एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते, संबंध संपर्क मिला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड होना, कंबाइंड होना कि अकेले हो, कंबाइंड सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते है
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

परिवर्तन कराना चाहते। जो

Aquí. Aquí. Pantan panchete. Kyunki. Aap sabhi ka. Baap dada se. आत्माओं के कारणों को भी निवारण

आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण आप ये मुक्ति चाहते तो शांति से सर्व बंधनों से

Shanti. Porte dik sabhi mein jaa.

karaoke. Chilate.

Shut up.

scholarship

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सके। जो है ना वो शब्द मर्ज हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के पर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: साधारण नहीं होता है।

कितना पका। खुशी को जाने ही नहीं देना। खुश रहे।

진짜.

Jessica.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में

Bye.

0: Jai, Kispivitise, Legan Banana Zarur. Itne to chatro na jante ho na vidya ke.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज वही चीज हो गई ना। Let's go.

es un deber. Ya que te bache, papá, me quedo con mis sanskaris.

मेरे संस्कार ये राइट है कहना कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है, राइट है, राइट है, जो समझते हैं राइट वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। कहते क्यों हो, गलती से कह देते हो। जब मर जीवा बन गए सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम है, वापी के का सरनेम।

Falana. जब मर्चीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराए संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो चलेंगे ना। होली चला Leap.

சிவன் பீக் டிக்ஷனரி. Son.

Listen.

0: Sabine.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, समाप्त करो। ये सूखे मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मुहूर्त नहीं बनने देता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी लेफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेफ्तापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्का पर नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन, इस

Yeah.

Sa

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल चाय संसार में, चाय प्रमाण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत, मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएंगे। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती, बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये होगा, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रही है या कोई भी

psiquiatrarse. Así. Yeah.

लक्ष्य और लक्ष्य देख।

0: दूसरी बातों को नहीं देख, आगे बढ़ना ही है। बोलो, सबको ये लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में मिनट भी मिले तो मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज से लेके आओ सुखे वतन में फरिश्ता का याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्रह्मांड रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। 5 मिनट एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेंगे, वो मन को उत्साह में रखेंगे और कला का अनुभव करें। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता बीच में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Wait.

0: सज्जनों की सेवा करते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े को। दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अच्छा लगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चित्रों में

0: unpad ti kati nikin wasto mi ruani pad to jo distapani ka uske samne agar koi bhi
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Fresh.

0: से शरीर रक्षण, शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुराने
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बात फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो। दवाई क्या है

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: personal day or reality. कितने हो चाहिए अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनलिटी कितनी बड़ी है दिखाई देती। चार फुट पांच फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, डायरेक्ट
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

याद करने वाले बच्चे। वाह, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

Timmy.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

servicio. Sé que te napiares, amco. Mato vanne vasi. Que se vaco. Deca. Sapato cuchote. Log vi que tie. Que concha la. दे रहा है ये पता ही नहीं पड़ता, जैसे मशीन चल रही है। तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। जो भी ग्रुप आता है उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी होते, चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे

Jest dość.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्थिति को
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। सेवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मा की स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की चाहे शांति कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मा की स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैल साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मा की स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो ऐसी भाषण की रिजल्ट में कहती है बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप के अनुभूति का भी वर्णन करे, मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकती है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: साथ नहीं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ पाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले

और अब घर चलना है। ये कानों में गूंजना चाहिए, बार बार अब घर चलना है। तो धुन लगा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट क्या है, जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? आते हैं वो ये वायुमंडल

0: अच्छा बैठ जाओ बैठ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए इस दिन की, तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे पाप समान बन जाना ही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति। अगर ये दोनों विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथ ही है ना, तो साथ देना अर्थात आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो, जो बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है तो बाप को किसे प्यार है। दीवार पुरुषार्थ बच्चों,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

c'est étonné.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Dulce. Mira, papá. Tallalo, que palo, papá. Apieches. Next.

0: पर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना, कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो?
2: पीछे ही है
1: इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो लेकिन समाप्त करो। शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने नहीं। एक बार भी इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है। इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते, तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ, समझे? बचाओ समय को, संकल्प को, जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कलंब उसी परमान राज भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, ये अगर मानो आपका आज का दिन जमा खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। ओके, दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो के अभी भी हमको चांस है जमा करें, अपने को उमंग उत्साह मिलाओ, अपने आप से रेस करो दूसरे से, अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी समय है जमा का, अभी टूलेट का बोल नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है ना, तो अच्छे पूछा रहते क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते, तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बनाना है, समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे, फिर बाप को मेहनत

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: द्वारा उसका हाल करा देगा। दो दिन हो गए हैं, ऐसा है ये नहीं करना, क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो ना, पीछे रहना चाहते हो, आगे जाने चाहते हो, तो आगे जाने का यही एक बात करना, दिल में कोई भी व्यर्थ बात नहीं रखना। इसके लिए अपना अमृत वेले बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, साथ साथ करते रहना कि नहीं जो भी आई है, खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। अगर गहराई में जाए ना तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेंगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते। यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना आगे जाएंगे उतने सूखम बातें आएंगी, क्योंकि पास में दानर होना है ना। घबराओ नहीं, बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी बात लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो बाहर भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने क्लब पास हुए हो पता है? है नशा, अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है, बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, ये स्मृति रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जी

Jay.

परिवार के प्यार।

See you.

Poker.

एक बच्चे के प्रति। दिल की दुआएं देते हैं बच्चे।

Les Deux.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

姐。Man up, gay. Sadassa.

बच्चों के लिए बाप सदा सर जो कहा गया सो रास है सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हसोर हासर है।

वहां फिर से ही बनना क्या मुश्किल है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Beak।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना और अचानक होना, इसका अभ्यास अगर सेवा भी की लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। इशारा दे रहा कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए पाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी लेकिन और तीन सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली नंबर क्या मिलेगा? चारी में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आशय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की बात फ्यारत संकल्प के समापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकार्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने दीवार पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो, ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई से डर कभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसी पर

coba.

स्वपरिवर्तन और चार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Awesome.

0: हर कलम आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कलम पहले वाले हैं। इस कलम के हो कि अनेक कलम के हो, अनेक कलम के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कलम वाले हैं। अच्छा, फिर तो निश्चित सर्टिफिकेट मिल गए है ना, मिल गए है ना कि लेना है, मिल गए है ना, मिल गए कि लेना है। नहीं, कल पहले मिल गए है, अभी क्या नहीं मिलेंगे, यही
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। पता हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

Kisses.

可怜。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Amen.

पर नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रायल मांग तो बहुत है। जानते हो आप

Hey.

Sesam.

Krishna. Is it?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी संकल्प चलती है तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? सारा मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन का जो अंतरक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा Yeah।

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डालर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर का तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा richest in the world, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ, और अखबार में डाला richest in the world, तो अभी भी डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी richest in the world, चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्यों? पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते, क्योंकि प्रत्यक्ष फल पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए बाबा से, सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल। सूखा ज्ञानी नहीं बनो, सुनई पाप का सुनई, परिवार का सुनई सुतई बन जाता। क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार वाले नहीं, बस नया स्वरूप बन। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह कि जिस समय आवश्यक उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना, गिरे हुए को उमंग उत्साह भरा हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा।

मेरे बाबा मेरे बाबा, हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में। मेरा बाबा क्योंकि ये प्यार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और बाप को भी

diyebilirdi. Lakin ya hareket edilse bu çıldırmak olur.

आते ही हर कर्म करते याद रहते।

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ, तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी ऐसी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उपागोत्सा अभी प्रैक्टिकल में है संपन्न बनना

इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक तो मैं सेवा का उमंग, वायुमंडल में फैलाया ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। वायुमंडल में फैलो

baby. वो शरद है, दीवार पर शरद है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज के दिन फर्श को विदाई देते हुए इंसान is

सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है, पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, फिर से उठा।

ने भी हाथ उठाए। उन सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठी है चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं मुबारक तो दे रहे हैं लेकिन मुबारक के साथ

скорее, мамочка.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा

0: Cícaro.
1: Sunday.

संगम युग में जो चाहे जितना चाहे उतना पाप से सहयोग मिल सकता है।

Si è detto conga. Ossa me. Sabi. Ca adeggia. Ossa al gelme.

ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿಕ ಸ್ವಾಮಿ.

see you.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द नहीं। जो अलग अलग बुशारत करती हो ना, उसमें थक जाती हूँ। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाती हूँ। एक ही बुशारत करो, साखी का तख्त नहीं छोड़ना, और कुछ दिमा तख्त नशी साखी बन के तख्त नशी आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे दबी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर ही अंदर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा सुनो, पापा और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं रोब क्यों, फिर क्या कहती है, अगर आप भी होते ना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना तो दृढ़ता मेजॉरिटी बाप दादा ने देखा। इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए

0: Question Bona. Mitä neisotte? Harat ma kebret. Tilka sane.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। Yeah.

Habito más puto que yo, nada.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

see.

Oh, the cheat.

Yeah.

0: Isliye आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे, अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि को लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साखी बनो। और सदा अपने कोई भी हाल चलो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या मैं बुद्धि को सीवा पड़ा हुआ नहीं रखना, खाली एक बाप और मैं तो समय अनुसार जाए टेलीफोन व आपके टीपी व जो भी साधन निकले हैं वो नहीं भी

pipí. A tarde y banana. Sus carolegen. Satano que a dar par. Apre chivan con Ivano. Sainz que satan. Kabibi. Shoes नहीं कर सकेंगे इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएंगे लेकिन अपने पति के लिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा धन मान धन जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है। अच्छा दिला रहे जी, पक्का किया है। धन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है। जब धन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर मेरा पन है कुछ होता ही क्या? धन मन धन जन सब हवाले कर लिया। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना कि मन मेरा है, यूज करना है मेरा, समझ के है मेरा।

Yeah.

Oh yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ, अनुभव करो उस वरदान का। रूहानी नशे

0: संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहते, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। उसके साथ साथ कोई एक भिन्न-भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका पाए रिजल्ट तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना

फरिश्तापन कर करम करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देंगे। बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज थकावट नहीं होगी। जैसे

Awesome.

0: us? Our attention chalte firte karam karte beech beech mein karte jana to ye practice mansa seva karne mein bhi sahyog denge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल फॉरेनर्स का फेवरेट शब्द है, बोलो कौन सा होगा? दो शब्द नहीं रह सकते।

सभी बच्चों को रिवाइज करा रही है। किस

Something.

Something.

什么的狗？卡里面

Yes.

सत्य की तरफ मन और बुद्धि

Nossa. Vegas.

Sati.

Exactly.

Levarsi. Vasciarsi. Donobrgarsi. Takbijao. Oh.

见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो सैंपल के रूप में है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे सदा आपके बैलेंस